0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ
1: काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा
1: प्यार को

अंधारे, अपने ही देशवासी हम वतन है हमारे, अशोक एक रंग सबका दर्द एक समान।

0: दरोड़ा गढ़ूंगे नवाड़ा
1: पाया पड़ेगा
0: घालू दरोड़ा गढ़ूंगे नवाड़ा।

0: आई नहीं वो
1: आएगी।
0: नरेश कैसे लग रहे हैं
1: आज? उस पार्टी में कत्लेआम हो जाएगा, ऐसी लग रही हो।
0: कुछ घबराहट से हो रही है।
1: वजह क्या है?

0: तो सुन ली उसकी धड़कन मैंने और समझ गई सब बात।
1: फिर बोलना, अरे बोलना क्या हुआ
0: फिर।

मैं सुधर गई थी कि ना अब तुम कभी आओगे और न मुझे कभी बुलाओगे, पर तुमने मुझे बुला लिया। तुम मुझे नर्तकी नहीं समझते हो ना, धन्य हो गोपाल, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे अपनी नजर से देखा है, समाज की नजरों से नहीं देखा। कितने अच्छे हो तुम, ये चाहता है अपने आप को तुम्हारे चरणों पर निछावर कर दूं। सुना तुमने, हम दोनों की बात गांव भर में फैल गई है, तुम्हें तो मालूम भी नहीं लोग हमारे बारे में कैसी ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे और तुम्हें

तुमने अपनी आवाज बाली को पार तुम्हारे खोए हुए स्वर्ग में वापस ले ली। हाँ आज देवी माँ से कुछ और भी मांग लेती। गाओ गोपाल गाओ, इस नौजीवन की पसंद बाहर का

0: वाली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। माई इस लॉटरी का नंबर मिला दे और जल्दी से बादल के नैया को पार लगा दे। अरे पांडू अभी तक मोतिया लॉटरी का रिजल्ट लेकर नहीं आई रे।
1: आती होगी गणपत भैया, तब तक माता जी का आशीर्वाद दे।
0: ले लो ले लो। जय जय जय जय जय जय जय।